0: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक
1: टाइम चेक अहिले ठीक 11 बजेको छ
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी
3: शुभ प्रभात गुरुआमा
4: शुभ प्रभात बस आज हामी के विषयमा छलफल गर्छौं
3: वैदेशिक रोजगारीको विषयमा

सुफिक्स मदन को मौलिक लय तथा शब्द सृजना भित्र अमृत आचार्य माइला गुरु र शर्मिला गुरुङ को सुमधुर आवाज अडियो तथा भिडियो अब डिजिटल बजार मा।